राम राम ओ नमस्कार रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषिमा टिकाराम चौधरीसँग आरती चौधरी स्वागत बा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद

0: कले से अपने हुकरा अपन फोन मसे कह सीखने बैठी है ओ एसएमएस ईमेल मसे फेल लेखी सीखने बैठी है अपन जवाब में विचार और प्रश्न धरक लाख कृषि अनुसंधान परिषद के पैसा निलग्न फोन नंबर 1135 में डेलक निर्देशन के आधार में रिकॉर्ड कर सीखने बैठी है पुस्तक रेडियो टाइगर के संपर्क नंबर 0084 40 31 88 और मोबाइल नंबर 9858 30 961 में फोन कई का रिकॉर्ड कराई और लिखाई फिर सीखने बैठी है पुस्तक रेडियो टाइगर FM@gmail.com में फिर अपन जिज्ञासा पठाई सीखने बाकी है।
1: लिटर रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि के और ऐना भाग में नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि मौसम सलाह बुलेटिन हो कृषि विज्ञ से लिहल सलाह सुझाव ऐना हप्ता में अपनाई से एक जिना कृषि संबंधी थ्योर जानकारी संग और मेरमेरी गतिविधि फैले का ऐना भाग मन ध्यान होने नहीं बा कार्यक्रम का ऐना भाग के न सुनती रही कार्यक्रम सुन के सुझाव सलाह के न लिख कर पठिने बाटी कना आशा करती राष्ट्रीय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र रेडियो टाइगर संघ संघरिया आरटीओ मैटिकारामफिना दिदाबिटी राम राम नमस्कार।